गावन तुजनो इंद्रेंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुजनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुजनो साध विचारे गावन तुजनो जति सती संतोखी गावन तुजनो वीर करारे गावन तुजनो पंडित पढ़न

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड़ियाई, सब सत सब तत् सब चंगियाईयां, सिद्धा पुरखां कियां वड़ियाईयां, तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिलै नाहि ठाकुर हाईया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरी तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा, आसा महला पहला।

होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसा रहते कम जात, नानक नावे बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करम गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई।

सुरहाऊ। हर जन के वट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यासु। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगासु। जिन हारु हारु हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पासु। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवासु। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगासु। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह कुदम।

गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया, ऊडे ऊडा वैसै को सा तिस पाछे बचरे चरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया, सब निदान दसष्ट सिदान, ठाकुर कर पल तरिया, जन नानक बल बल सत

हर त्यागो संतो जी सब दुख विसारन हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर क्या वह हर क्या वह तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावह सोई वरता जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैं दासाई जो तू भावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरु परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौआ सुंदरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण

यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझे हो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट पर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट के पट पट की जान जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तर्थ तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही

नाद असंभु ताका मूड उचारत पिता जा को पेव न पावत बेता ताको कृपा हन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम पाव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन खाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद सिद्ध कर मुँह सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु उबारी सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु उबारी सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई सुवैया

अजयस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया। शब्दोता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

सतगुर रहया भर पूरे, बिणवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनत

0: पार धन दुख किछ पाप न फेड़े, जम जंदार न आवै नेड़े, कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई, कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवां, घर बारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। और सत्कार जो सात संघ जी मारे बखी की श्रद्धा भाव सात पितर गुरबाणी सुखन साहब के पाठ किए ने, इस वे संध्या समा जान के सोधा रास साहब के पाठ किए हैं, अरदास भरिया ने मारे बख्शे पितर नाम किए हैं। प्रशासन अध्यक्ष पाठ में गुरु साहब ने आप गुमका बख्शे किया है। और सात संघ जी आप सब पता है कि हम शाम की ब्राह्मण होने ने, सब तो पहला भाई साहब भाई हरपंच सिंह जी लिया जी का जत्था आप जी ठीक 7 बजे तक आरती की तरह सब द्वारा मर सब चैनल जोड़ वास्ते भान पुराला करे। 7 से 7:50 तक आप कथा श्रवण करोगे। 7:30 से 8:30 तक कीर्तन करेंगे भाई साहब भाई सनातन का जत्था। तो सारी से तुम बेनती कि 8:30 बजे तक मैं डिगे और आनंद मान अज शाम सारे कथे श्रवण करके जीवन दिन कड़ियां सफला करो। तो आप सात सिंह आप सिंह बेनती है कि तुम हर रोज लड़ी वार सहज पाठ श्रवण कर रहे हो, उस वास्ते बेनती है कि सारी संगत जिन्हें जिन्होंने घर च लड़ी वार सहज पाठ आरंभ किए ने, भाई रजिंद्र सिंह सैकटरी साहब अपना उन्होंने नंबर से कॉल करके अपना जो सारा प्रोग्राम है उन्होंने दस दौ, ताकि समय से जो जो भी प्रोग्राम बने वो तुम सूचित करके बुला के उस वे श्रवण कर सकते हैं। तो बाकी सात संघ जी संगत बेनती है कि जरूर गुरु घर हर रोज आया करो, आओ अरदास करो, मत्था टेको, जिनी देर तक सत्संग जी तुम चाहो डिगी को बैठ के कथा की दरबार मना सकते हो। कि सत्संग जी संगत बेनती है कि तुम देख रहे हो कि जो नाथ साहब साउथ साहब के डबल बिल्डिंगा बन रही ने उन्होंने बेअंत माया खर्च हो रही है। सो वास्ते बेअंत पुराना वालों जिन्होंने अपना दसवां सबर किया है, गुरु घर माया पेटा की है, सो सारे बट पागी हैं। बाकी जिन्हें अज तक माया पेटा नहीं की सारे बेनती जरूर अपना हिस्सा पा के ये सारे सारा जो कार्य पूर्ण करने की कोशिश करिए। सात संघ जी खालसा स्कूल का एडमिशन जो अज चालू है वो खुला है, आप अपने बच्चों जरूर खालसा स्कूल दाखिल कराओ, पंजाबी पढ़ा के उन्होंने कामयाब करो, ताकि वो अगों तो महाराज के चरणों बैठ के पाठ कर सकन। सो ये सिखी वास्ते बड़ा जरूरी है। सात संघ जी 3 अगस्त हो संपूर्णता पुरब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का आप संगत हाल ही पारने जो गुरु साहब ने सू दात बख्शी है, उस वास्ते गुरु साहब का असी कोटन कोट धन्यवाद करना। बाकी सात संघ जी 11, 12 और 13 राग कीर्तन दरबार हो रहा है, कीर्तन दरबार होने रागा में तो सब संगत हाजिर भरो 11, 12 और 13। बाकी सात सिंह 17, 12 है पहला प्रकाश पुरब शाह गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का, सब तो पहला प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब जी का सात संघ जी 17, 12 है। सो सारे संगत बेनती गुरु हाजिर भरो, गुरु मारे बख्शी दादा से धन्यवाद करिए। हम भाई साहब तैयार होकर राम करके शरण करिए। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की।

0: इतनी सेवा प्रारंभ करनी जी पुला चुका दी खेमा कार्य योग भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पासों पावन चरण लड़ी वार कथा शर्म करी जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक धन धन गुरु नानक।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना।

मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे। गुर नानक जिन सुने पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। गुर नानक जिन सुने पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, पौड़ी खंड पताल असंख, मैं गणत न होई। तू करता गोविंद, तुद सिरजी तुदै गोई। खंड पताल असंख, मैं गणत न हुई। तू करता गोविंद, तुद सिरजी तुदै गोई। लख चौरासी मेदनी, तुझ ही ते होई। एक राजे खान मलूक, कह कहावह कोई। एक साहा सदावह संच धन, दूजे पत खोई। एक दाते एक मंगते, सबना सिर सोई। विन नावै बाजीरिया, पियाहावल पिहावल होई। कूड़ निखुटे नानका, सच करे सो होई। विन नावै बाजारिया, पिहावल होई। कूड़ निखुटे नानका, सच करे सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, शामा दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो पावना सहित जुड़ बैठ के गुरु चरणा विच गुरु दियां बख्शिशां खुशियां लै रहे हो। बहुत प्यार दे नाल आप जिया ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई सह भाई हरभजन सिंह जी लहरी तिना दे जत्थे पासों सरवन कीता है। उपरंत जो अज विचार अधीन साड़ी पौड़ी सी मलार राग दी बारहवीं पौड़ी, उसका पाठ आप जी ने सरवन कीता है। इस पौड़ी नाल आए हुए दो सलोक वो आपां कल विचार चुके हाँ। सलोक तीसरे गुरदेव जी दे सन, जिन्हां विच गुरु साहिब जी ने एक किरपा उपदेश कीता सी कि ऐ जीव तू उस अकाल पुरख दे दर नूं भावे नहीं जानदा, पर तेरे अंदर उहदे प्रति खिच पैंदी है, तेरे अंदर उहदे प्रति तड़फ जागदी है,

इंसानी मन इंसानी दिमाग कला का बड़ा मुतासर है, भाव शक्ति का कह लिए ताकत का कह लिए मुतासर तो भाव है भी बड़ा कायल है, बड़ी छेती प्रभावित हुंदा है। जदों किसे ताकत नू वेखदा है, किसे समर्था नू वेखदा है, जगत संसार विच वाहिगुरु परमात्मा ने हर एक नू कुछ ना कुछ कला कला नाम शक्ति दा है, गुण कह लिए, गुण भी एक शक्ति है, कोई ना कोई गुण कोई ना कोई शक्ति दे के भेजिया। ते हर एक प्राणी मात्र किसे दूसरे दे गुण किसे दूसरे दी कला किसे दूसरे दी शक्ति तो प्रभावित हुंदा है, उदे तो बड़ा मुतासर हुंदा है भी मैनू कोई इहदे तो जानन लई मिल जाए, इहदी शक्ति दा इहदी कला दा मैं भी कोई लाभ उठा लवां, मैनू भी कोई लाभ मिल जाए। संसार विच हर धर्म विच इस तरह जो भी धर्म दे आगू ने धर्म दे पैगंबर ने धर्म के पैरोकार ने असी उन्हां दे जीवन विच देखदे हां, कोई पैगंबर कोई पैरोकार कोई अवतार गुरु पीर ऐसा नहीं होना कि जिदे नाल उहदी शक्ति का प्रगटावा ना होया होवे, उहदी करामाती जीवन बाबत ना आउंदा होवे, उहदी समर्था बाबत ना पता लगता होवे। हर एक बाबत हर पैगंबर हर अवतार हर गुरु पीर संसार जगत अंदर पूजिया ही तां जांदा है ज्यादातर उदी करामात उदी शक्ति करके। हालांकि रब ते मार्ग ते तुरन वाला हर परमेश्वर दा प्यारा अखौती करामातां दा सदा खंडन करदा है, नाटक चेटक जादूगरियां दा सदा उखंडन करदा है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि उदे अंदर परमात्मा दी सत्ता परमात्मा दी शक्ति निवसदी, वह सुते सिद्ध सह सुभाविक जो आखदा है वह करामात ही बन जाता है। उसका कारण की है, क्योंकि उस करामाती दे नालो जुड़ जाता है जिदे अंदर सारिया कला संपन्न है, हर कला संपूर्ण जे को है उते परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर जिदे नाल मान लो किसे किसे चंगे लिखारी नाल कोई बंदा सहायक बन जाए ना, उसका मददगार उसका हैल्पर बन जाए ते ओ भी कुछ ना कुछ लिखन लग जांदा, उहदे अंदर उहदा गुण आ जांदा। जे कोई किसे कवि दी संगत करदा है भावें बिल्कुल मूड होवे जड़ होवे, पर जे ओ किसे कवि दी संगत विच रहिंदा है ते ओ भी कविता रचन लग जांदा है। जे कोई किसे मल दे संगत विच पहलवान दी संगत विच रहिंदा है भावें लड़े ना हो दा पेच ओ भी सिख जांदा है। भाव हर एक इंसान जदो किसी की संगत विच रहिंदा है ना किसी के संग विच रहिंदा है ते उहदा गुण उहदी शक्ति उहदा प्रभाव उहदे ते पैंदा ही पैंदा है, उहनां कोल इक अद्धा गुण हुंदा है। ते गुरु साहिब जी कहिंदे वी जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व कला संपन्न है जिहड़े अठे पैर उहदी संगत विच आ जांदे ने अठे पैर उहदे प्रभाव विच रहिंदे ने ते आपां किवें कह सकते हां भी वाहिगुरु समर्थ दी शरण विच रहण वाले नूं कोई ताकत नहीं मिलेगी कोई गुण नहीं मिलेगा कोई परमात्मा दी कृपा नहीं मिलेगी। जे एक आम इंसान दे संग करन दे नाल एक आम इंसान दे जीवन अंदर प्रभाव पैंदा है, इंसान जे इंसान दा प्रभाव कबूलदा है केवल इंसान दा नहीं क्योंकि मनुखी दिमाग ऐसा है मन ऐसा जिदे नाल जुड़े है उदा प्रभाव कबूल लेंदा। बाणी कहिंदी जैसा सेवे तैसा होए, कि जिवें दी इस सेवा सेवादार ते थे चिंतन करदा है जिवें दे किसे दे संग विच रहिंदा उस तरह दा हो जांदा है। ते जे अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व कला संपन्न है जे कोई उदा धुरों बख्शिश कीता होया भेजिया होया कोई गुरु पीर महात्मा पैगंबर औलिया अवतार कि असी किवें इनकारी हो सकते हैं भी उहदे ते परमात्मा की कला नहीं वापरदी, उहदी रसना ते भी ताकत है, उहदे नेत्रां विच भी ताकत है, उहदे कर्म विच भी ताकत है, जिस पासे बोलदा है उहदा बोल ही हुक्म बन जांदा है कानून बन जांदा है, उहदे बचन जिहड़े ने उह सारी कायनात नूं पूरियां करन दे लई उस पासे ला देंदे ने। इह मैं तारज कीती कि इह
परमात्मा दे संग विच रहन वालियां दे प्रभाव अधीन रहन वालियां विच भी ताकत आ जांदी है ते उह अकाल पुरख वाहिगुरु आप किड्डा वड्डा समर्थ है। एक तां दे विच गुण है भी उह सर्वज्ञ है, सर्व व्यापक भी जिन्हों कहने हैं, अंतर जामता भी जिन्हों कहने हैं। सर्व व्यापक दा मतलब है कोई दुनिया दा ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा थां नहीं कि जिथे परमात्मा दी शक्ति है नहीं, परमात्मा विद्यमान नहीं, परमात्मा विराजमान नहीं, ऐसी कोई दुनिया ते थां नहीं। वो हर थां ते है, ताही तां वो सर्व शक्तिमान है ना, क्योंकि वो सर्व व्यापक है। वेखो जो चीज जिन्नी पसरी हुई है, जिन्नी फैली हुई है, उन्नी वो ताकतवर है, उन्नी वो पावर दे विच है, ते जिथे मर्जी उहदे तों आपां लाभ लै सकदे। असी तां अज उस युग विच रहिंदे आ, उस विज्ञान दी शिखरता दे युग विच रहिंदे आ कि जिथे हर रोज ही करामातां वापरदियां, हर रोज ही करामाता है। विज्ञान दे युग विच विज्ञान दीआं करामातां किते कोई घट ने किन्नियां ने, पर सारा कुछ करनहार दा वरतारा जिहड़ा अदृश्य है उहदे बाबत आपां किवें किंतु कर सकते हैं। जे उहदे बनाए हुए मनुख इन्नियां काढ़ां कढ़दे ने कि वह करामात तों घट नहीं, तो वह भी इस तरह अपने आप नूं फैला रहे ने ताकत दे नाल। विज्ञान भी अज यही तां यतन कर रही है कि विज्ञान सर्व व्यापक बन जाए, अंतर जामता आ जाए, तो काफी हद तक विज्ञान ने इन्ना ताकतों के उत्ते अपना प्रभाव पा लिया है। सर्व व्यापकता, अज जेड़ा मर्जी बंदा संसार दे किसे कोने ते बैठा होवे, किसे ने उदी जानकारी लैनी होवे, उनू देखना होवे, वेखना होवे, मिलना होवे, गलबात करनी होवे, एक उंगल दे नाल ही सारे कार्य हो जांदे ने। सर्व व्यापकता नहीं, यह विज्ञान की सर्व व्यापकता ने भी हर थां ते पसर गया, उन्हें अपने आप नूं इन्ना पसार लिया है, ते इह सर्व व्यापकता दे नाल फिर उह सर्वज्ञ होके शक्तिमान भी किन्ना है। दुनिया के किसी कोने ते बैठे हुए मनुख नूं बचाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, ये ताकत किदे कोल है? ते अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की यह ताकत निरंतर तो साइंस कुछ नहीं नवा करती, वो जो कुछ भी करती है इस कुदरत दे विच वो विद्यमान है, वो छुपया होया है, उसनूं बस प्रगट करके जां उहदी खोज करके अपने नाम थले उस चीज नूं प्रचार दी प्रसार दी है, पर है सारा कुछ उही जो इस कुदरत दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप अपनी शक्ति नाल बनाया है। सब कुछ उहदा ही है, क्योंकि वह आप सर्वज्ञ है। उहनूं तां साइंस नूं तां फिर किसी साधन दी यंत्र दी लोड़ पैंदी है, हालांकि कोशिशां ही हो रही ने भी एडी ताकत हो जाए साइंस कोल, विज्ञान कोल, कि किसी भी मनुख किसी भी जीव नूं अज मिलन वास्ते किसी फोन दा किसी स्क्रीन दी लोड़ तां पैंदी है। यह भी यतन हो रहे ने भी यह भी जीवन चो निकल जान, सीधा मनुख चितवे सीधा मनुख विचारे ते उहदे नाल ही जिहदे बारे सोचे उहदे नाल उहदा कनैक्शन जुड़ जाए। इथों तक खोजा यह सारियां सर्वगता तो आईया ने, सर्व व्यापकता तो आईया ने, जिहड़े गुण परमात्मा परमेश्वर दे हन, सर्व शक्तिमान दे हन, ते सर्व शक्तिमान वाले पासे हर इंसान तुरना चाहता। हर इंसान दे अंदर ये बुनियादी भुखा ने, भावे कोई किते भी बैठा है उन्हूं चाहिए, वह भी यह मंगता है भी मेरे को इन्नी कु ताकत हो, मैं सब कुछ जान लवा, सब कुछ देख लवा, सब कुछ कर सका, क्योंकि जिथों आया है ना उदा असला जेड़ा है वह सर्वज्ञ है, सर्व शक्तिमान है, सर्व व्यापक है, वह अकाल पुरख वाहिगुरु, तो करता है सारी कायनात का, तो मनुख भी करता बनना लोचता है, तो बन रहा है, यतन कर रहा है हर तरह के। सो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे एक गुण ने जेडे उदे अंदर, एक गुण करके ही उदी कला उदी ताकत दा कोई अंदाजा नहीं, उनु मिनया गिनया नहीं जा सकता। मनुख दी ताकत सीमित है, क्योंकि वह आप सीमित हद बद्दी है, काल दे विच है। जेडी चीज काल समा स्थान, काल दा अर्थ है समा, समा ते स्थान दे अधीन है ना जेडी चीज, उदी सीमा है, उस सीमा तो बाहर ही नहीं हो सकती। असी किन्ने भी ताकतवर हो जाइए, हर बंदे दी ताकत दा समा है 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल, उदी ताकत है, वह सीमा विच है, फिर समय विच है,
कारण विच कारण दे करके है तो उदू बाद मुक जाएगी, पर परमात्मा क्योंकि काल तो परे है, समय तो परा है, इस करके वो सीमा तो परे है, उदे बाबत कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता भी वो किन्नी ताकत का मालक है ते किन्ना चिर रहेगा। इंसान इंसान की ताकत का पावर का अंदाजा ला सकता है भी इहदे कोल 4 साल की ताकत है, इहदे कोल 10 साल की ताकत है, ये 50 साल राज करेगा, इन्ना चिर रहेगा। इंसान इंसान की ताकत का अंदाजा लांदा है ते लगता भी है ते मिटदा भी है इंसान, पर परमात्मा का ताकत ना सीमा विच है ना समय विच है, इस करके वह असीम है, उदे बाबत दस्या नहीं जा सकता, गिनती नहीं कीती जा सकती। हालांकि इंसान करता है, गुरु साहब जी ने अज जो पौड़ी विच कृपा कीती ना दी ताकत दसी है, खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई। खंड दा अर्थ हुंदा टुकड़ा, टुकड़े दा भाव है यह धरती जिहड़ी है ना साडी, एक खंड है, एक टुकड़ा है। ते गुरु साहब जी कहिंदे इहो जे टुकड़े पता नहीं किन्ने गुने इस ब्रह्मांड विच, इस यूनीवर्सल विच, असी उहदी गिनती नहीं कर सकते, असी ते सिर्फ अपनी धरती नूं जानने आ, जां इस धरती ते दुआले जिहड़ियां धरतियां घूमदियां ने सिर्फ सानूं उहनां दी पछाण है, दिसदे सानूं सारा कुछ है, असमान विच जिन्ने तारे चमकदे सानूं दिसदे ने, असमान विच जो कुछ असी तारे चमकदे दिसदे आ की ने, सारियां धरतियां ने, सारियां धरतियां ने खंड ने, ते सानू की पता। हालांकि ये यत्न किते जा रहे ने कि एहो जा जीवन जो इस धरती ते है किते होर भी है, बड़ियां क्यासा कीतियां जांदियां, खोजा कीतियां जा रही ने, पर इस धरती दे पुलाड बारे ही मनुख खोज करदा पिया है, ते जे तक ये भी खोज संपूर्ण नहीं हुई, इस करके सोचदा भी सिर्फ इस धरती ते ही जीवन है, धरतियां ते पत अनगिनत ने, मनुख दी गिनती मुक जाएगी, मनुख गिन गिन के खत्म हो जाएगा, पर उदे धरती दे खंड नहीं गिने जा सकते भी एहो जे टुकड़े उन्ने किन्ने कु संसार विच, इस यूनीवर्सल विच, इस ब्रह्मांड विच सिरजे हुए ने, अनगिनत अनगिनत कहना भी यह भी साडी एक इउं कह लईए भी असमर्था है। अखंड खंड टुकड़े पाताल, पाताल दा अर्थ है भी धरती दे थले। हालांकि सियाने गल मनते ने साडी धरती का उपरला हिस्सा जिहड़ा नूं आकाश कह दिता है ते थलड़ा हिस्सा पाताल कह दिता है, पर सारा कुछ है पुलाड विच, सब कुछ जो है ना इस स्पेस विच ही घूम रहा है, साडी धरती भी स्पेस विच ही है, ते इस करके कोई आकाश पाताल उपरला थलड़ा हिस्सा नहीं, पर इस धरती ते असी उस स्थूल रूप विच रहने, इस करके समझाण दे लई कि जो कुछ सानू उपर नू वेखी दिसदा है ना कि साडे उपर किन्ने असमान विच तारे टिमटिमाउंदे ने, समझो इन्नी साडी धरती तों थले ने, इन्ने ही पताल धरती दे थले भी लोक वसदे ने, खंड पताल असंख, असंख दा अर्थ है गिनती तों बाहर ने, संख नाम गिनती दा है, जिवें अज कल इत्थे गिनती है ना, अपनी इत्थे गिनती तां इउं है कि मिलियन विच है, बिलियन विच है, ट्रिलियन विच है, जिहड़ी साडी भारत की गिनती है ना, वह गिनती इस तरह है भी जिवें 100 सैकड़ा हुंदा है, उस तो बाद 1000 10000 लख अरब खरब, उस तो बाद संख असंख नील, इस तरह चलती गिनती, नील तो बाद गिनती खत्म हो जाती, असंख का अर्थ भी है भी वह संख्या विच नहीं आउंदा, कोई भी संख्या मुकर्रर नहीं, जिस संख्या विच असी कह दिए कि इनिया परमात्मा ने धरतियां पैदा कीतियां ने, गुरु साहब जी कहिंदे उहदी बनाई हुई किरत असंख है, संख्या तो रहत है, क्योंकि वह आप असंख है, जिहड़ा आप असंख है उहदी किरत भी असंख है, गिणती च नहीं आ सकदी, खंड पताल असंख मैं गणत न होई, हे वाहिगुरु मेरे कोलों गिणती नहीं हुंदी, कौन गिण सकदा है, किदे विच ताकत है कोई गिण के दसे कि इन्ना इन्ना असमान दे विच तारे ने, इन्ना, हालांकि अंदाजे बड़े लाए जांदे ने, सारे ला रहे ने कि एक मिलकी वे च इन्नियां जे तारे ने ते इन्नियां मिलकी वे ने, इन्नी हो सक, सब अंदाजे ने, झूठ अंदाजे ने, मनुख अपनी होमै नूं संतुष्ट करन वास्ते आखदा है, पर गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी बिल्कुल सच दे उपाशक ने, इस करके उन्होंने कहा सब अंदाजे साडियां गिणतियां मिणतियां धरियां धराइयां रह जांदियां, बस यही कहना यही पूर्ण है कि वह असंख है,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, 7 ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਗਿਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾਲ 7 ਮੰਨੇ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾਲ ਗਿਣਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਪਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਗਾਈ, ਨਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੌਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮਨੌਤ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੌਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਨੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨੌਤ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੋਜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਢਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਝਗੜਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਸਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਦਸਤੰਗੀਰ ਦੇ ਉਮਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਪੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 7 ਹੀ ਆਕਾਸ, 7 ਹੀ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਫਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ
जे तुसी मैनू प्रभावित कर दो इस गल दी भी बिस इस तो वध नहीं तां मैं तुहाडी गल नाल सहमत हो जावांगा बिना शर्त तो खिमा मंग के। पर जे मैं तुहानू इस गल दे लई मना लवां भी मैं तां लखां कह रहा लखां तो भी गिणत ने तां तुस तुहानू बिना शर्त मनना चाहिए। कह लगे पीर बड़ा तलखी विच सी उहदे मुरीद बड़ी तलखी विच सन। भाई साहब भाई गुरदास ने इस घटना का हवाला दिता है ते एक क्या ना लिया बेटा पीर दा। गुरु साहब जी ने फिर पीर दस्तंगीर दे बेटे दी बांह पकड़ी ते उन्हों ना लै करके आत्मिक मंडल दे विच उन्हों ऐसे नजारे विखाए कि वो अख दे फुरकन दे टाइम तक वो पता नहीं किन्ने कु पतालां ते आकाशां दी सैर कर चुका सी। आत्मक तौर ते शरीर तो बाहर होकर ते जदों होश विच आया शरीर विच आया ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे दस अपने बाप नूं पिता नूं कि की गिनती किन्नी है। ते उहने वेख्या पिता जी मेरी मत इजाजत नहीं देंदी कि मैं इन्ने समय दे अंदर जो कुछ वेख्या उहनूं गिण सकदा देख सकदा। आ साडी धरती समझ लो भी एक रेत दे कण तो निक्के कण तो भी छोटी है। इन्ना इत्थे संसार दे इस ब्रह्मांड विच उस अल्लाह ने उस खुदा ने रब ने जिहड़ा है ये विधान बनाया होया गणत ना आवे। गणत नहीं हो सकती गिनती नहीं हो सकती कि किन्ना कुए पसारा है किन्ना कुए वरतारा है बेअंत है। गुरु साहब ने कहा अखंड पताल असंख मैं गणत न होई। हे वाहिगुरु मैं गिनती नहीं कर सकता। ये कुछ चीजा ऐसिया हुंदिया ने जिथे मत साथ छड़ जाए ना जिथे मत हार जाए उथे अपने आप नू भी समर्पण कर देना चाहिए। उहदे च ही बंदे नू सुख मिलता है। मत विच पवे ना दिमाग सुलझे सुलझावे ना उस सवाल नू ते बंदा उलझ के रह जाता है फिर खुआर हुंदा है दुखी हुंदा है। इसे तरह गुरुदेव जी कहते कि उस परमात्मा की किरत नू जे बंदा सुलझाण जाए ना तां उलझ के रह जाएगा। उस परमात्मा की किरत नू कोई सुलझा नहीं सुलझाण दा अर्थ इत्थे आ भी अपने अंत पा लए अपने वस कर ले। तां गुरु साहिब जी कह लगे ये खुआर ही होएगा इहदे पल्ले कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत लोग अपना मानसिक तवाजन गवा देंदे ने बहुत लोग गवा देंदे ने। उहदा कारण की है कि दिमाग की शक्ति हालांकि बहुत है पर फिर भी सीमित है ना। साडी ताकत साडे इंद्रियां की ताकत सीमित है। असीम नूं लभण जावे तो यह फिर अपना आपा गवा देंगे। उहदे लई बेहतर है कि अपने आप नूं उहदे विच रख दिओ ते जां जो मालक ने जिन्ना दिता है उहदा गुणगान उन्ने च गाइए भी इन्ना को मैनूं सोझी दित्ती है मैं इन्ने विच ही राजी हाँ। इस करके दाता जी कहिंदे इस रजा विच रहना सिख ते आख मैं गणत न होई। हे परमात्मा गिनती नहीं कर सकता मेरे विच ये समर्था ये पाया नहीं कि मैं तेरी गणना कर लवां तेरी किरत की गिनती कर लवां। तू करता गोविंद तुद सिरजी तुद है गोई। तू करता है इस सारे ब्रह्मांड का तू करता करन वाला है। गोविंद गो नाम धरती का बिंद नाम सहारा देन वाला है। गोपाल गो नाम धरती का पाल नाम पालन का है। ये गोविंद परमेश्वर का नाम है गोपाल परमेश्वर का नाम है गुण तो बनया। गो नाम धरती का है हर धरती नू पालदा है इस करके उहदा नाम गोपाल है। बिंद दा अर्थ है सहारा दिंदा आसरा है इस करके उहदा नाम गोबिंद है। हे वाहिगुरु तू करता है इस कायनात का ते इहदा सहारा भी तू है। ये तेरे आसरे ते खलोती है। तुद सिरजी तू बनाई है तुद गोई गोई दा अर्थ हुंदा गुण देना गुण दा अर्थ है कठिया कर देना। जिवें कहने ना आटा गुण दिता खिल रहा हुंदा है उन्हों गुण दिता जांदा कठा कर दिता जांदा मिट्टी गुण दिती जांदी है। कहिंदे ये कायनात तू खलारी है सिरजी है ते जदों तेरी मर्जी है तू इन्हों गुण देना कठिया कर देना है। तेरी ताकत दे पानी भरदी है सारी कायनात। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ा सोहना कहा आपां रोज पढ़दे हां चौपाई साहब जी की बाणी विच जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं गोई। आकर्खण ते उदकर्खण ये दो शक्तियां ने। आकर्खण दा अर्थ है खला दी शक्ति। जदों परमात्मा ने
मान लो अपने आप को छिड़किया छंडिया अपने आप में, पंजाबी दा शब्द है जिवें कपड़ा छंड दईए उहदे विच जिन्ना पानी हुंदा ना वह दूर दूर तक बूंदा खिलर जांदियां ने। कहिंदे समझो वाहिगुरु ने जदों अपने अकरखण दे विच अपने आप को छंडिया ते सारी कायनात खिलर गई बन गई, ते फिर वह अपने आप को समेटदा है। उदकरखण उहदा मतलब है अपने आप को समेटना, जदों अपने आप को समेटदा है जो कुछ है उहदे नाल आ जांदा है। कहिंदे वाहिगुरु की शक्ति है उस तरह संसार की हर चीज नू बनांदा है ते मिटा देंदा है, आपे सिरजदा है आपे ही उनू गुंद देंदा है उनू कठिया कर देंदा है। ये वाहिगुरु परमात्मा का विधान है। लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई, हे अकाल पुरख वाहिगुरु ये मेदनी ते इस धरती ते जिन्निया भी जूना ने 84 लख धार्मिक लोगों ने मनिया ने, साइंस अजे इस गिनती दे नाल इतफाक नहीं रखती, उन्होंने लभिया ने कुछ लखा लभिया ने, पर गुरु साहब जी या होर जिन्ने भी साढ़े पूर्व के धर्म ने ना उन्हां पूर्व के धर्मां विच यही गिनती मिलती। वेखो परमा गुरु साहब सच्चे पातशाह किन्ने बेअंत ने, कहनू तो भी धरतियां की गिनती भी तो दे सकते सन, जे अंदाजे ही लाना हुंदा भी इन करोड़ां ने इनिया लखां ने, जिवें 84 लख दतार पिता महाराज ने कोई अंदाजा नहीं लाया। जो सतगुरु दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने अनुभव विच उतारिया उही दतार पिता महाराज ने अगे अखरां विच उकरिया। ये 84 लख का अनुभव गुरु साहब सच्चे पातशाह, हालांकि उन्हां तो पहला पूर्व विच ये चीजा मनिया जांदियां सन, पर उस चीज नूं गुरु साहब जी ने स्वीकारिया भी बेअंत जुन्ना ने गिनती साड़ी खोज अजे उत्थों तक भावें नहीं हुई, पर इत्थों तक भी बाणी विच आउंदा बयालीस लख जई जल मैं होते, कि उन्हां विचों 42 लख जूनां ते ऐसियां ने जिहड़ियां पाणी विच ही ने, पाणी दे विच रहिंदियां, बाकी 42 लख जिहड़ियां ने तां ही 84 लख बणदियां, इस धरती ते नभ विच रहिंदियां ने। कुछ जूनां ऐसियां ने जिहड़ियां धरती ते आउंदियां ही नहीं, असमान ते उड़दियां ने, ऐसे जीव भी हन उह धरती ते नहीं आउंदे। इस करके किवें बंदा अंदाजा ला लेगा, असी कहिए भी ये अंदाजे जा झूठ है, ऐसा नहीं, जो गुरु साहब ने कहा वो अपने पूरे अनुभव विच पूरे अपने होशो हवा विच कहा है। इस मेदनी दी जुन्ना दी गिनती सदातार करदे कहिंदे 84 लख मेदनी तुझ ही ते होई, इस मेदनी दी 84 लख जून तेरे तो बनी, कई थावां ते कहा। जो आप शब्द पढ़ते हाँ सेवक कह भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका, 84 लख जून उपाई रिजक दिया सब हूं को तदका, सारिया नू तदका दा अर्थ है जदों तू पैदा किते। हे वाहिगुरु सेवक कह भरपूर जुग जुग, ए सेवक नू तू इस जोगा बना लै भी सदा ही वाह गुरु तेरा सब सदका, तेरे सदके जावा कुरबान जावा, सदके जाण दा अर्थ है मैं तेरे तो बलिहार जावा। तू 84 लख जून उपाई है पैदा कीती है, ते 84 लख जून विच्चों कोई भी ऐसा नहीं जिहड़ा जिन्हों तू रिजक नहीं दिता। कमाल दी गल है जिस जून नू जिथे रखिया है उहदा रिजक भी उत्थे है। आपां जिवें कहना मैं कुछ जूना ते ऐसियां जिहड़ियां धरती ते नहीं आउंदियां, ते कुछ जूना ऐसियां ने जिन्हां नू हवा ते रोशनी नहीं मिलदी, पत्थरां विच बंद ने, राह ही नहीं, कोई किसी राह च नहीं, जिथे बैठिया ने उत्थे बैठिया ने, पर रिजक उन्होंने भी गुरु साहब दिता है। दतार जी का बचन हों भगत धन्ना जी का पाखन कीट गुप्त च हो रहता ताचो मार्ग नाहीं, कहिंदे पत्थर विच कीड़ा गुप्त रहिंदा है, कोई राह नहीं उत्थों निकलता बाहर आके। असी कहिए ना घरों बाहर निकलांगे ताई कुछ कमावांगे खावांगे, पर गुरु साहब कहिंदे कमाई की गल खाण की रिजक की जे गल है ना, गुरु साहब कहिंदे परमात्मा ने उन्होंने भी दिता जिन्हों कोई राह ही नहीं दिता। पाखन कीट पत्थर का कीड़ा गुप्त हो रहता गुप्त ही रहिंदा बंद ही रहिंदा, ताचो मार्ग नाही उहदा किहड़ा मार्ग है बाहर निकलना, पर दाता जी कहिंदे उहनूं भी दिंदा। पाणी दे जीआं बारे असीं सुणदे हां गुरु साहिब ने बाणी च ही बचन कीते ने कि जिहड़े जी पाणी च रहिंदे ने उहनां दे कोई व्यापार ते नहीं चलदे, उहनां दीआं हट्टियां चलदीआं ने, उहनां दे स्टोर चलदे ने, कहिंदे नहीं, पर फिर भी उह कैसा विधान है। दत्ता जी कहते उस पानी दे विच ही विच उपाए सायरा तिना पे रोजी दे, कहते उन्होंने भी रोजी दिती है, जिया का आहार जी खाना ए करे,
ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਬਾੜ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਬਾੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਡਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਮਾਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨਗਾਰ ਹੈ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਿਰਾਦਤ ਸਰਵ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਹੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੋਖਤ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁੱਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇ ਤਨਹਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਏ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਉਦਣ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਤੁਝੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਕਹਿ ਕਹਾ ਮਹਿ ਕੋਈ। ਇਸ ਮੇਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀਟ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਹਾਦਰ ਮਲੂਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਚ ਧਨ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਤ ਖੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਵਰੂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਦੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਖਾਨ ਅਮਲੂ ਮਲੂਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਕਈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਕਈ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਸੋਈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਲਾਵੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ,
ਪਰਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤਿਹਾਵਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ, ਕੌਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਲੂਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਪਿਹਾਵਲ ਹੋਈ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਨਿਖੁੱਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੰਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਲੂਕ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਪਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੂੜ ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: राती
1: वरत नेम करे बहुपाती
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड कृत में विराज जीव
1: महा उदास तपी सरथीव
0: अगन माहे हो मद प्राण
1: कनक अशव है वर पूम दान
0: नियुली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संयम अत साधन
0: निमख निमख कर से कटाव
1: तौ पी होम मैल न जाव
0: हर के नाम समझ कृष्णा है
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना थी छुट
1: गर्भ गुमान न मन ते हुट
0: सोच करे दिन स्वर रात
1: मन की मैल न तन ते जात
0: इस देही को बहुत साधना करे
1: मन ते कबहु न बिखिया टर।

0: सगल पुरख मह पुरख प्रधान
1: साधु संग जाता मिटै अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिय सब ते ऊंचा
0: जाता मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाम तिन कट कट चीना
0: मन अपने से बुरा मिटाना
1: देखै सगल सृष्ट साजना
0: सुख दुख जन समदृष्टेता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा
0: मेरे धन को

0: सगल कटा की अंतरजामी
1: अपनी गल मित जन हो आपे
0: अपन संग आप प्रभ राते
1: तुम्हें अस्तित्वम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया
1: सगल उद्दम में उद्दम भला
0: हर का नाम जप हो जी सदा
1: सगल बाई में अमृत बाई
0: हर को जास सुन रसन बखान

0: जाकै अंतर बसै प्रभ आप,
1: नानक ते जन सहस माद,
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावै,
1: गले ओढ़ निभावै,
0: कहा बुझारत बूझै डोरा,
1: निस्तेय त समझै पोरा,
0: कहा बिसन पद गावै।

0: सुख मंदर
1: त्याय सदा मन अंदर
0: देह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
1: आठ पहर सिमरहु तिस रसना
0: देह प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
0: देह प्रसाद पाठ पटम भर हटावे
1: तिस त्याग कत अवर लुभावे
0: देह प्रसाद सुख से सयुज्य
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
0: देह प्रसाद सब को मन
1: मुख ताकू जस रसन बखाना
0: देह प्रसाद तेरु रहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: सब जी जब लग है मान भाव है
1: नानक पात से ती घर जावे
0: जे प्रसाद राम कंचन देही
1: लिव लाव तिस राम स्नेही
0: जे प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जे प्रसाद तेरे सगल चिद्र ठाके
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: जे प्रसाद तुझको न पहुंचे
1: मन श्वास श्वास सिमरहु प्रभ ऊंचे
0: जे प्रसाद भाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: हे प्रसाद आप कन बहरी जय
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
0: हे प्रसाद आसु हस्त असवारी
1: मन तिस प्रभ को कबहु ना बिसारी
0: हे प्रसाद वाग मिलक तना
1: राख पुरवे प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन वंत बनाई
1: उठत बैठत सद तिसहते आई
0: तिसहते आई जो एक लक्का
1: इहां उहां नानक तेरी रख
0: हे प्रसाद करे पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: हे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी
0: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप
0: हे प्रसाद तेरी निकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: हे प्रसाद तेरी पत्र
1: है गुरु प्रसाद नानक जस का है
0: हे प्रसाद सुने कर्ण नाद
1: जे प्रसाद पेखा है बिस्माद
0: जे प्रसाद बोल है मदस
1: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जे प्रसाद हस्त कर चले
1: जे प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जे प्रसाद परम गत भाव है
1: जे प्रसाद सुख सहज समाव है
0: ऐसा प्रत्याग वर्गत लाग हो
1: गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो
0: जे प्रसाद तू प्रगट संसार
1: इस प्रभ को मूल न मन हो विसार
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूल तू ताको जाप
0: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: सहजान मन सदा हजूरे
0: जे प्रसाद तू भावे साज
1: रे मन मेरे तू तास्यो राज
0: जे प्रसाद सबकी गत होए
1: नानक जाप जपै जप सोए
0: आप जपाए जपै सुनाओ
1: आप गावाए सुहर गुण गाओ
0: सब कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रभु सुप्रसन्न बस मन सोए
1: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।

0: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साधक संग मुख उजल होत,
1: संग मल सगली खोत।
0: साधक संग मिटै अभिमान,
1: साधक संग प्रगटै सुज्ञान।
0: साधक संग बुझै प्रभ नेरा,
1: संग सब होत नवेरा।
0: साधक संग पाए नाम रतन,
1: साधक संग एक उपर जतन।
0: साधकी महिमा वर्णै कौन प्राणी,
1: नानक साधकी सोभा ब्रह्मै समानी।
0: साधक संग अगोचर मिलै,
1: साधक संग सदा पर भुलै।
0: साधक संग आवै बस पंचा, साध संग होए सब की रेन। साध के संग न कत हूं तावे, साध के संग माया ते पेना।

0: साध के संग नहीं हो ताप,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बने आए,
0: साध के संग न कबहू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस अगोचर लह,
1: साधु के संग
0: साध के संग बस थान ऊंचे,
1: साधु के संग ऊंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निधान,
1: नानक साधु के करवान,
0: साध के संग सब कुल उधार,
1: संग साजन मीत कटन स्तर,
0: साधु के संग सुतन पावे,
1: संत सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सब असुर देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग मत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सब जनम,
0: साध के संग नहीं कछु काल,
1: दर्शन भेट दोत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हर,
1: साध के संग नरक पर,
0: साध के संग इहां उहां सोहेला,
1: साध संग विषय तर मिला,
0: जो इच्छा सोई फल पावे,
1: साध के संग न मिटता जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसै,
1: नानक उतरे साध सुनसे,
0: साध के संग सुनो हर नाउ,
1: साध संग रखे गुण गाओ,
0: साध के संग नमन ते बिसरै,
1: साध संग सर पर नसर,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कट,
0: साध संग पै आज्ञाकारी,
1: साध संगत पै हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध मिटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाना है,
1: जेता सुने तेता वचने,
0: साध की उपमा तेहु गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंच ते

0: जय श्री जन्म कमल अलीप
1: ज्ञानी सदा नरदोख
0: जय श्री सूर सर्प कौ शोक
1: ज्ञानी के दृश्यमान
0: जय श्री राज रंग को लागे तुल भगवान।

0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेर,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य नाय जाय,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म

0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मानते बिन सह सगला परम
0: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: साध संग बाप अमल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की रहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय बिसन प्रीत
1: हर के चरण हृदय सर
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन पर बोध
0: राम नाम आत्म मैं सोध
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित कहे उपदेश जग जी।

0: ताची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार विहारी
0: कई कोट भय तीर्थवासी
1: कोट पर परमेवासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपिसरोते
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे
1: कई कोट कब का विचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्यावे
1: नानक करते कांत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट पेग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिरा
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट परदेश परमाहे
0: जित जित लावो तित तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरकन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट देश शशियर सूर नखियत्र
1: कई कोट देव दानवे इंद्र से छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत तार
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निसारे
0: कई कोट राज तामस सात को
1: कई कोट भेद प्राण से मरतर सात
0: कई कोट किए रतन समंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वंति वे
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मेरे का

0: अनुबंत
1: सो होवत बिष्टा का जंत
0: आवस्तो कर्मबंत कहावे
1: जन्म मरै भव जोन भ्रमावे
0: तन कूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे
1: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
0: धनवंता होए कर गरवावे
1: दृण समान काश संग न जावे
0: बहु लस्कर मान खूपर करे आज
1: पल पीतर ताका होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: किन मैं होए जाए पसमंत
0: किसे न बधाए आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुरु प्रसाद जा का मेरे मान
1: सो जन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे उधारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनक से आ गए अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
0: अनक जतन करा तम नहीं द्रवे
1: हर दरगह को कैसे गवे
0: आप उसको जो पला कहावे
1: किसे पलाई निकट न आवे
0: कमन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब ही जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जून मैं फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: तब कृपा ते बंधन टूटे
1: प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहज कटे नाक पौड़ता
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
0: अंग भोग बिखिया के करे
1: नह तृप्ता वै खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुप्र मनोरथ बिरथे सब काज
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
0: कर्म करा बनवा पे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्म करा बन करने हार
1: इसके हाथ कहा विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए
0: जो किसी की न सो अपने रंग
1: सब ते दूर सब हूँ कै संग
0: जय देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरे न विंचे आवे न जाए
1: नानक साध ही रहा समाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सब के साथ
0: आपकी नो अपन विस्तार
1: सब कछु सकाउ करने हार
0: ते बिन कहो किछोए
1: थान थन अंतर एक सोए
0: अपने चलत आप करने हार
1: कौतुक करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुरु प्रसाद किने वख्यानी
0: सच सच सच सब गिना
1: कूट मधे किने बिरला चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: घट घट सुने श्रवण बख्याणी
0: घट पवित्र पवित्र पवित्र बनीत
1: नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत

0: हरन परन जांका नेत्र फोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सद जाकै
1: सर्व तोग सुनिए कर ताकै
0: राज महराज जोग मैं जोगी
1: तप महंत तीसर गृहस्थ मैं भोगी
0: त्याहे त्याहे भगतै सुख पाया
1: नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया
0: जाकी लीला की मित नाहे
2: सगल देव हारे बगाहे
0: पिता का जन्म के जानै पूत
1: सगल प्रभुई अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: जन दास नाम दया वैसे
0: एक गुण मैं जाको पर

0: नाना चालित करे खिन माहे
1: पूरन सब ठाए
0: नाना बिद कर बनत बनाई
1: अपनी कीमत का बेगाए
0: सब कट दिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीव नानक नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
2: नाम के तारे
1: खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
2: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
2: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरियां सब पवन
1: नाम के समुद्र सुन्त्रवन
0: कर कृपा जिसे आपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत अस्थान
1: सत सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी वाणी
1: सत पुरख सब माहे समानी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: तिसे बुझाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत तेज अंजा के हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए
1: नाम जगदा की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मेट गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सुकरणे हा

0: अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे
1: हकीकत मित कोई न रखे
0: के सेवक को न पूछे
1: के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक तह दिस प्रगटाया
0: की कीरी मैं कर रखे
1: भस्म करे लश्कर कोट लख
0: इसका सास न काटत आप
1: ताको रखत देख रहात
0: मान चिदन करत बापात
1: जिसके कर्तव्य करते जात
0: मारे न रखे वरना कोय
1: सब जिया का रखा सोए
0: आहे सोच करे रे प्राणी
1: जप नानक प्रभु लख बिरानी
0: बारंबार बार पज पिए
1: पी अमृत हिमंत तंत्र पिए
0: अमृत अंजन गुण पाया
1: जिसके जय वरना इंद्र

0: अमृत दृष्ट पेखय होय संत
1: गुण बयांत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लए मिलाए
1: यह बाएक अस्तत अनेक
0: सात पुरख पूरन बाबेक
1: आहो बोल न पहुंचत प्राणे
0: अब अगोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: बाकी कीमत किन न पाई
1: अनक भक्त बंधन नित कर
0: चरण कमल हृदय सिमर
1: सत बल हारे सत बरे अपने
0: नानक जिस प्रसाद

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अवरु पाप सब मीत विसारो,
1: चरण कमल हृद मैं उद्धारो,
0: करण कारण सो प्रभु समरथ,
1: कर गहो नाम

0: नेत्रों पे एक दर्स सुख होए,
1: मन सा जागत होए,
0: भगत जना के मन तन रंग,
1: बिरला को पावे संग,
0: एक बस्त दीजे करमया,
1: गुरु प्रसाद नाम जप लया,
0: ताकि उपमा कही न जाए,
1: नानक रहया सर्व समाए,
0: प्रभ क्षंद दीन दयाल,
1: भक्त वत्सल सदा कृपाल,
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल,
1: सर्व कटा कर्त प्रतपाल,
0: आद पुरुख कारण करतार,
1: जना के प्राण आधार,
0: जो जो जपै सो

0: नानक करने हार ना दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी
1: जब एक है हर अगम अपार
0: तब नरक सुरग कहो कौन अवतार
1: जब नरगुण प्रभ सहज सुभाए
0: तब सिर सकत कहो कित ठाए
1: जब आप है आप अपनी ज्योत धर
0: तब कवन निडर कवन कत डर
1: अपन चलते आप करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अपनासी सुख अपने आसन
0: कहे जन्म मरण कहो कहा बिना सुन
1: जब पूरन करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस हुए
1: जब अब गात गोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन पादे
1: अपने आप ही अजर जा
0: मान के आपन रूप आप ही उपर जा
1: निर्मल पुरख पुरख पत होता।

0: असंख मलेश मल भक्त काहे, असंख निंदक सिर करे पार।
1: नानक नीच कहा विचार, वारिया न जावा एक बार।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं शपै संत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहिन जेहे
1: रूप रंग अर रेख भेख कौ कह न सकत कहे
0: अचल मूरत अनुभव प्रकाश।

0: नम संग देखे नम संग लिखे
1: नम संग काए नम संग जाए
0: नम संग गंजे नम संग पंजे
1: नम संग नामे नम संग ठामे
0: नम संग कर्मंग नम संग तर्मंग
1: नम संग नामंग नम संग दामंग
0: नम संग जीते।

0: नमस्तं स्नानं
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
0: नमो एस्ते नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
0: अनुपे अरूपे समस्तो निवासि
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता
0: अधो दयाधं अघं ओघहर्ता
1: परम परम परमेश्वरं पौष पालं
0: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं
1: अशेदी अपेदी अनमं अकामं
0: समस्तो प्रादि सम

0: प्रीते
1: नमो रोग रोगे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतन नमो सर्व पीतन
0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान
1: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
0: नमो सर्व दृश्य नमो सर्व कृष्ण
1: नमो सर्व रंगे त्रिभंगे अरंगे
0: नमो जीव जीवन नमो बीज बीजे
1: बीजे समासंग प्रसिद्धे।

0: चतर चक्र जाने
1: चतर चक्र भरती चतर चक्र भरती
0: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
0: चतर चक्र मान चतर चक्र दान
1: चाचरी छंद न सत्र न मित्र न ब्रह्म न पितर।

0: नमोनर्कनासे सदैवं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
0: प्रमादं परमाते सदा सर्वजाते
1: अनाद स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिगामे

0: गुणगण प्रणाम जल थल मुदाम
1: अंचज अंग आसन अपांग
0: उपमा अपार गदमत उदार
1: जल थल अमंड।

0: दानव इंद्र गजेंद्र निराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजान गदान अनेक सोमवर साज परेंगे।
0: महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम

0: कोई अवर ना त्यां
1: जो बर चाहो सो तुम से पाओ
0: सेवक सिख हमारे कारियन
1: जन जन सतर हमारे मारिया
0: हाथ दे मुझे अमरिय
1: मन काल का त्रास न भरिया
0: जो सदा हमारे पश्चा
1: करिया तो जो करिया हर अच्छा
0: लो मोहे रखन हारे
1: साहेब शांत सहाय प्यारे
0: दीन बंदिष्टन के हंता
1: तुम हो पुरी चतर दस कंता
0: काल पाए ब्रह्मा बिपतरा
1: काल पाए सब जुग अवतरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

0: अर्पाहन अनुमानत
1: महामोड़ का भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा सेवन
1: निरंकार का जीनत न पैव
0: अपनी बुद्ध है जेती
1: वर्णन पहन पहन तो है तेती
0: लखाना जाए पसारा
1: के पद सजा प्रथम संसारा
0: के रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग पहो राव कहे भूपा
0: जेतनी
1: खान बहुत रज दीनी
0: फूल राजा है बैठा
1: बहुत मट पहो शंकर बैठा
0: सेठ दिखाए अचंब
1: आज जुगा रूप से अम्भव
0: रश्या मेरी तुम कर

0: दुखद हमारे
1: जवन पग परी तिहारी
0: तन के तुम संकट सब टारे
1: कल को एक बार त्याय है
0: आके काल नित न
1: क्या होए ताई सब कला
0: दोच रहत करें तत कला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो
0: आके ताप तन कम है हर हो
1: सिद्ध कर्मो सब होई।

0: दुष्ट दोगते लेहो बचाई
1: करी हम पर जग माता
0: ग्रंथ करा पूर्ण सब राता
1: सकल देव को हरता
0: दुष्ट दोगियन को क्या करता
1: तुझ पे जे अल्लाह
0: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: बाशत पल पा में सोई
0: दुख न दशा व्यापत कोई अडल
1: गंग जाय सरसना पावई
0: सुने मोड़ जत लाए चतुरता आवई
1: दुख दर्द पौ नित्य न

0: सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे।
1: साचा नाम मेरा धारो, साच नाम धार मेरा, जन भुखा सब गवाइया।
0: सुख मन आय बसया, इन इच्छा सब पजाइया।
1: सदा कुर्बान कीता गुरु बेटा, जस दिया है वडिआइया।
0: नानक सुन संतो सब धरो, प्यार साचा नाम मेरा आधार।
1: वाजे पांच शब्द सत घर सुभागा, घर सुभागा शब्द वाजे, कला जत घर धारिया।
0: बस कीते काल कंटक मारे।

0: आनंद सदा करते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा गलव कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया
1: कह नानके हो आनंद है आनंद करते जानिया
0: तू दे सोई जन पावे पावे तब सो जन दे जिसन होर क्या करे बेचारिया
1: एक बार भूले एक नाम लाग सवारिया
0: प्रसादी मन प्यार निर्मल जिना पाना पावे
1: कह नानक जैसे देह प्यारे सोई जान पावे
0: संत प्यारे अकथ की करे कहानी
1: करे कहानी अकथ केरी कत द्वारा पाईया
0: मन तन सब सौंप कर को हुक्म मन्या पाई

पावन हजूरी विच अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवान नांद्र आप जी की अमृतमयी बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ अते नितनेम बाणिया दे पाठ संति रूप विच कीते गए ग्रीव नवाज आप जी की आगाध गोद बाणी दे पाठ कर दिया आप जी के दात्रियां पासों हुईयां बेअंत बेअंत भुला आप

प्रदान करनी। सतगुरु जी अमृत वेले बेअंत संगता ने आप जी के पावन चरण कमलां विच हाजरियां भरियां, तिल फुल पेटावां माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती। सतगुरु जी कृपा करनी, दर आई समूह संगत दी हाजरी दर ते प्रवान करनी, तिल फुल भेटा दर ते प्रवान कर लैनी। सबना नूं दरों घरों नाम दान, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना, किरत कमाइयां विच वाधे पाउणे, घरां परिवारां विच सुख वरताउणी, बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राही हाजरियां भरियां, सेवावां भेजियां।

खोज शब्द में राज करेगा खालसा की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे जो सरदार

तुई कुदरत सा जिया करया संगठ हो चाओ, दाता करता आप तो तुझ दे वह करे पसाओ, तू जानो ये सब सह दे लै सह जिंद कवाओ, करया संगठ हो चाओ, करया सन डिठो चाओ।

पौड़ी से की संतोखे जिन्नी सचो सच त्याया उन्नी मंदा पैर न रखियो कर सुकरे धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ भूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दुज धोती वस्त्र कपाटं जी जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने चौ

बड़ी साहिब होने दयाल कृपा करिता साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसना हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया हो वह प्रवानता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए सी।

थोड़ी नानक अंतर जापनी हर तां के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इक ना गलींज नीरियां करी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हाँ।

0: श्री वाहिगुरु साहिब जी अमाय दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वासु करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवे
1: गुर नाव निध
0: दरियाओ जन्म हम काल खतोवे सुख टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

एक शब्द की हाजरी सारी संगत मिल करके लवाना करिए जी। फिर दसरिया का समा समाप्त होवेगा। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। करो कृपा सारी संगत रसना नु पवित्र करिए। गरीब नु आ सके पातशाह जी दे पावन दर दियां हाजरियां बड़े प्यार दे नाल संगतां पर रहियां हन। अज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों नाल लैके आए ने स्कूल दा। अज पहला दिन है सैशन दा। गुरु कृपा करे सतगुरु सच्चे पातशाह बच्चों दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखण। बच्चों नु कीर्तन दियां दातां गुरबाणी पढ़न दियां दातां झोली विच पा के नवाजना करन। गुरु प्यारियो पंजाबी दे नाल अपने बच्चों नु जरूर जोड़ो, गुरमत दे नाल अपने बच्चों नु जरूर जोड़ो। खालसा स्कूल विच एडमिशन अजे भी ओपन है, सो आप जी अपने बच्चों नु दाखिल करा के पंजाबी पढ़ा के गुरमत पढ़ा के बाणी दी संथ्या करा के इतिहास पढ़ा के उन अपने बच्चों नु योग बनाओ ताकि बच्चे आने वाले अपने फ्यूचर विच बाणी दे नाल जोड़ सकन, गुरु घर दे नाल जोड़ सकन, सेवा सिमरन दे नाल जोड़ सकन। सो आओ मैं ज्यादा समा आप जी का नाम लवां। करो कृपा मिल करके शब्द गायन करिए।

कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखहु शर्मा। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब किरपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवाना दी हाजरी भर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप वडभागी हो जो गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हो। प्यार सहित अमृत बाणी दा कीर्तन भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी होरां दे जथे पासों आप जी ने सरवन कीता है। समा होया है अमृत बाणी दी कथा दा। पिछले दिनी गुरुद्वारा साहब दी जो धार्मिक प्रबंधक कमेटी है, क्योंकि हर वक्त गुरु घर दे अंदर प्रबंध विच ये चीज सब नू सोचन लई मजबूर करदी है कि धर्म दा ओ केड़ा कार्ज असी करिए, गुरुद्वारे साहबान अंदर केड़े केड़े प्रोग्राम उलीके जान कि संगत वद तों वद गुरु दियां खुशियां प्राप्त कर सके। सो ये गुरमता पाया गया, जिवें भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी बैणीवाल जी ने आप जी नूं दस्या भी वक् वक् विषयां ते गुरमत की रोशनी विच विचार किते जान, संगत नूं बाणी की संथ्या दे नाल अर्थां नाल जोड़िया जाए। उस संदर्भ विच ये मता पाया गया सी कि हर ऐतवार कोई विशा लै करके आपां गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी की कथा करिए। तां अज जो आप जी दे नाल दास ने विचार करनी है कि गुरमत की रोशनी विच धर्म की है ते धर्म नूं अपनाना क्यों जरूरी है, धर्म जीवन दे विच की परिवर्तन करता है, ये असी गुरमत की रोशनी विच गुरबाणी विचों सीखण दा समझण दा सारे यतन करांगे। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला फतेह दी सांझ करिए, कोई रसना वांझी ना रहे। प्यार सत फतेह गजाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म एक बहुत वड्डा विशा है, दुनिया दा कोई भी कोना ऐसा नहीं जिथे धर्म लागू ना हुंदा होवे। उसनु नाम वखरा दिता जा सकता है, उदी बहरूनी रूप रंगत वखरी हो सकती है, पर जो समुची मानवता दा समुची कायनात दा जो असल धर्म है वो सारिया दा कुल मिला के एक ही है। हर एक ने धर्म दी व्याख्या कीती इत्थों तक कि 19वीं सदी दे अंदर यूरोपियन लोकां ने यूरोपियन साइंसदान लोकां ने मनोविज्ञानिक लोकां ने बड़े वड्डे पद्धर ते धर्म दी व्याख्या बड़े साइंटिफिक तरीके नाल करन दा यतन भी कीता, क्योंकि उन्हां नूं ये देखिया ये खोजिया भी दुनिया दा बहुत हिस्सा किते ना किते धार्मिक रूप विच बजिया होया, धर्म दे रूप विच धार्मिक तौर ते रहो रीतियां कीतियां जा रही ने, धार्मिक तौर ते ही समाज बनिया होया। इस करके बहुत ज्यादा जेमस वर्गे हीगल वर्गे होर अनेक अमेरिकन विद्वाना ने भी जेड़ा है वह धर्म के उत्ते बहुत ज्यादा रिसर्च की, बाखूब किताबां लिखिया उन्होंने, बड़े कमाल दे उन्होंने सिद्धांत ने। जे उन्हां दी आपां फलसफे की गल करिए भी धर्म की है, जे आपां कहीए मनोविज्ञानिक धर्म की परिभाषा की करते हैं तो बड़िया ने, उन्हां विचों एक परिभाषा है हीगल की कि धर्म वो शक्ति है जेड़ी मनुख नू सहजता तो संपूर्णता वल ले जांदी है। कि धर्म दा कर्म की है, सहजता तो संपूर्णता वाले पासे जाना। किसे विद्वान ने धर्म दे भी अर्थ कीते ने कि जदों एक सीमित मन असीमित मन नू पकड़ना चाहता है जां उदे गुणा नू अपने विच धारण करता है, समझ लो वह धर्म है। किसी ने धर्म की व्याख्या की है कि धर्म वो शक्ति है जो संसार ते निरंकार नू आपस विच जोड़ती है। अनेक धर्म दी व्याख्या ने, पर आपां गुरमत ते रहना है।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਕੋ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੱਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ

ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੁੱਭ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਨੇ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਧਰਮ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਰੂ ਕਿਤਾਬਲੀ, ਉਹਦੇ 15 ਅਧਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ 15 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੱਖੇ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੀਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੰਦ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੰਦ ਨਿਸ, ਮੰਦ ਕੰਜ ਬਿਨ ਤਾਲ, ਜੀਵ ਮੰਦ ਤਿਉਂ ਧਰਮ ਬਿਨ ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਟਾਲ। ਇੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਚਮਕੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਡਰਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਦ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮੰਦ ਨਿਸ, ਮੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ, ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ। ਮੰਦ ਕੰਜ ਬਿਨ ਤਾਲ, ਕੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ ਕੌਲ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਵ ਮੰਦ ਤਿਉਂ ਧਰਮ ਬਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਮੰਦ ਤਿਉਂ ਧਰਮ ਬਿਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾ ਟਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 10 ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 80-90% ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਲੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਕਵਲ ਦੂਸ਼ਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਰ ਭੈ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਿਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਮ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਤਮ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਦਇਆ, ਮ੍ਰਿਦ, ਸਤ, ਬਚਨ, ਤਪ, ਦਾਨ, ਸੀਲ, ਸੋਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਲਿੰਗ ਦੱਸ ਜਾਣ। ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਮਾ ਤੇ
धर्म दे मूल ने खिमा अहिंसा दया मृत दया धर्म दा मूल है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी बाणी आपां पढ़दे आं, दतार पिता महाराज ने धर्म नूं बोल्द किया है। बोल्द दा अर्थ है जिहड़ा चुक के बैठा होया है। सारी धरती दा भार धर्म दे मोढ़ियां ते है। जिन्ना चिर धर्म कायम है, धरती दा धर्म कायम है, उन्ना चिर प्रजा टिकी हुई है। इस करके दतार जी कहिंदे तौल धर्म दया का पूत दया दे आसरे टिकिया है। संतोख थाप रखिया जिन सूत, ते दया संतोखी दे मन विच पलदी है, स्वार्थी दे मन विच कदी दया जन्म नहीं लेंदी। संतोख ते धर्म दे दया दे नां ते ही धर्म पैदा हुंदा है, ते जिसने सारी धरती नूं धारण कीता है। ते गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने धर्मसाल जिहड़ा खंड दस्सिया है, धर्म खंड, उहदे विच सारे इस धरती दियां चीजां दा जिक्र कीता है कि हर अपने धर्म नूं निभा रहा है। राती रुत्ती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धर्म दी साल है, धर्म दा घर है। इनू सतगुरां ने धर्म सिखण ते सिखाउण वास्ते स्थापित कीता है। ते धर्म की कि जिदे नाल परमात्मा नाल जुड़िया जाए, वाहिगुरु दा नाम जपना, यही उच्चाचरण रख के जिहड़ा धर्म कमांदा है उह इस धर्मशाला दे विच्चों सचखंड तक पहुंच जांदा है। उही इस धर्मखंड तों सचखंड तक जांदा है। खंडां दी यात्रा धर्म तों शुरू हुंदी है। जे तुसीं पहला धर्मी ने, बहुत लोग आउंदे ने जदों पिछे जपजी साहिब जी दी व्याख्या भी आपां कीती जां अक्सर आ जांदे ने, सब तों पहलां इह गल पुछी जांदी है कि जपजी साहिब विच जिहड़े खंड दा जिक्र कीता है, सच खंड अखीरले खंड दे, उहदे बारे पुछिया जांदा है भी बाबा जी तुहाडा की विचार है, इह खंड है कि नहीं। पर उहनां नूं कहा जांदा है भले पुरशां पहलां धर्म खंड नूं पक्कियां कर, जिस दिन तू अपने आप अपने धर्म दे खंड अपने कर्म खंड ज्ञान खंड नूं अंदरों अनुभव करन लग जाएगा ना, फिर तेरा पुछना बंद हो जाएगा। तेनू पुछन दी लोड़ नहीं, तेनू महसूस करन दी लोड़ है, अनुभव करन दी लोड़ है। धर्म नूं छड़ के सचखंड किवें प्राप्त होएगा? धर्मी नहीं बनना, मैं धर्म नहीं कमाना, मैं सिमरन नहीं करना, मैं सेवा नहीं करनी, पर सचखंड वेखना है। पर गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने सचखंड अखीर च रखिया, वह भी बख्शिश दे नाल जोड़िया भी कर्म खंड वाहिगुरु की कृपा दे नाल मिलेगा, पर तेरे हाथ की है। धर्म खंड दे विच तां पक्किया हो, धर्म विच तां पक्का हो। धर्म विच पक्का की खिमा अहिंसा दया मृद सत बचन तप दान सील सौच तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान। लिंग दा अर्थ है यह पछाण है धर्म दी कि तेरे अंदर खिमा है। खिमा करना बड़ा वड्डा तप है। खिमा ही नहीं है मनुख दे पास, किसी नूं माफ करन दी ताकत ही नहीं है। अहिंसा यह फिर कई तरह दी अहिंसा दा अर्थ है। कई धर्मां ने कहा ना भी साडा ते श्रेष्ठ धर्म की है अहिंसा परमो धर्म, कि परम धर्म की है अहिंसा। अहिंसा दा अर्थ है किसी ते वधीकी ना करनी, ना शरीर करके किसी ते वधीकी प्रहार करना, ना मन करके किसी पारे बुरा चित बना, ते ना शब्दां नाल किसी ते अहिंसा करनी। तीन तरह की अहिंसा है। ते बंदा एक ना एक नाल ते जुड़े ही हुंदा, जां किसी ते आपां शारीरिक प्रहार करदे आं, जे असी इन्ने समर्थ ने भी किसी नूं मार सकीए, ते साडा मन सदा ही उहदे प्रति माड़ा चित वधा रहिंदा, बुरा बोलदा रहिंदा, उहनूं गालां कढदा रहिंदा, बुरा उहदे बारे सोचदा रहिंदा, असी मन की अहिंसा करदे आं। जां बचनां की हिंसा करदे आं भी इन्ने क्रोध विच होईए जदों उहनूं सजा ना दे सकीए, फिर असी जुबान तों उहदे लई माड़ा बोलदे आं। इह तिन्ने तरह की अहिंसा तों बिल्कुल अपने आप नूं मुक्त करना पैंदा जे धर्मी बनना। खिमा अहिंसा दया, दया ते मूल है। मृद, मृद दा अर्थ है कोमल हो करके रहना। कोमलता, ऐसी कोमलता कि जेड़ा तेनू मिले। हुण ऐसा धर्मी नहीं होना चाहिदा कि जिदे कोल बैठे डर लगे, जिदे कोल ऐसा सिरजिया गया। कई धर्मां विच ऐसे धर्मी भी बन गए कि जिन्हां कोल बहन लगे ही बंदा डरदा है। जे तुसी उन्हां कोल बहन लगे ही डर जाओगे कि किते साडा हथ ना लग जाए, किते असी इहनूं छू ना जाइए। जिहड़े अपने आप नूं अपरस ज्ञानी आखदे ने, उह जिहड़ा मनुख अपने आप नूं अपरस कह रहा है, उह दुनिया दे नाल जिन्ना चिर अपने आप नूं जोड़ेगा नहीं, धर्म किवें सिखाएगा? अपरसता ते चाहीदी कि साडे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सानूं छू ना सके, इह अपरस ज्ञानी है। पर अपरस की बना दिता कि मैं जी किसे बाहर दी चीज नूं छूंदा नहीं, मैं जी किसी के घर का खांदा नहीं, मैं जी किसी चीज धारण नहीं करता, यह अपरसता गुरु साहब जी ने स्वीकार नहीं किया। मृद बचल, मृद बचन होने चाहिए ने। सोच, सोच का अर्थ अंदर की पवित्रता होनी चाहिए। तृष्णा बिना
अंदर संतोख होवे, धर्म लिंग दस जान, ए धर्म दे दस चिन्ह ने। फिर अगे बड़े प्यारे बचन किते उपजे धर्म वाक सत अत कर, भी धर्म पैदा किवें हुंदा है। जे को कहे मैं धर्मी बनना है, वेखो हर धर्म दे अंदर मैं पहला अर्ज किया धर्म नूं धारण करन दा जां धर्म विच प्रवेश करन दी आपो अपनी मर्यादा है। असी सोचने भी सिख धर्म विच जे आउणा है ते खंडे बाटे दी पौल छको ते धर्मी बन जाओ, पर गुरु साहिब जी ने यह बचन किते ने खंडे दी पौल तो पहला धर्मी बनन दी सतगुरु दतार पिता महाराज जी सिख्या देंदे ने कि ए तेरा धर्मी होण दा पूर्ण तौर ते तू धर्मी होएगा, पर उदे तो पहला दतार पिता महाराज जी ने कहा भी सच दा धारनी है उपजे धर्म वाक सत अत कर। अत दा सती होना चाहिदा, सत वा नाल जुड़िया होना चाहिदा तू। जे तेरे अंदर साची पैदा नहीं होया तू किसे धर्म दा धारनी नहीं हो सकता, किसे दीन दा नहीं हो सकता, किसे मजहब दा नहीं हो सकता। उपजे वाक अत सत कर, दया दान ते धर्म वधै नित, ते फिर दया ते दानी जदो तेरा जीवन हो जांदा उदो बंदे दे धर्म दा जस फैलदा, समझो दा धर्म वधन लग गया, वो धर्मी बनना शुरू हो गया। अस्थित धर्म खिमा कै संगा, ते जदों ये भावना अंदर आ जांदी भी खिमा करन दी भावना बिना वैर विरोध तो बिना किसी स्वार्थ तो, समझो धर्म उहदे अंदर पलना प्रारंभ हो गया। ते हुण नाश किवें हुंदा है, धर्म क्रोध कर होत विपंगा, जदों बंदे दे अंदर क्रोध आ जांदा है क्रोध सारे धर्म दा नाश कर दिंदा है, क्रोध धर्म दा नाश कर दिंदा है। सत संतोख ते खिमा धर्म नूं धारण करदी है। इस करके दतार पिता महाराज ने कहा भी जिथे भी खिमा होएगी, जिथे भी दया होएगी, उथे धर्म अपने आप पलेगा। ये गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती है, ये धर्म दी परिभाषा है। जिन्हां ने भी इस परिभाषा दे अनुसार ही अपने जीवन नूं रखिया वो सच्चे धर्मी बन गए। उन्होंने अपने जीवन दे विच कदी सत दा दामन नहीं छड्डिया, कदी सच ते दया नूं नहीं त्यागिया, कदी अपने जीवन दे अंदर अंदर दी पवित्रता नूं नहीं दूर कीता। इस करके ओ धर्मी सदा संसार विच परवाने गए, लोक विच भी ते परलोक विच भी। पर जिन्हां ने केवल अखौती रूप विच अपने आप नूं धर्मी रखिया, गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने उन्हां लोकां नूं कदी धर्मी परवान नहीं कीता। हालांकि धर्म इक्को ही है, जो धर्म दे नां ते जिन्ने मजहब दीन बने हुए ने असी उन्हां सारयां नूं भी धर्म कहिंदे आ, पर धर्म इक है। उस धर्म दे राह ते धर्म दी सिखलाई लई जिन्ने भी पंथ ने दीन ने मजहब ने, जिवें असी खालसा पंथ कहिंदे आ, खालसा पंथ दा मकसद भी की है कि धर्म दे नाल जुड़ना, धर्मी होना, ते धर्मी हो कई कि परमात्मा दे दर तक मनुख पहुंच सकदा। इस करके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने तां जपजी साहिब जी दी पहली बाणी विच ही कह दिता कि मेरा सिख कौन है जेड़ा किसे दीन मजहब दे नाल उस ढंग नाल नहीं जुड़दा, भी जिस ढंग नाल उहदे अंदर नफरत क्रोध हंकार ईरखा पैदा होवे। सिख दा फर्ज है धर्म दे पंथ दे राह तों मुक्त हो करके धर्म दे नाल संबंध बनाना। सी रोज पढ़दे आ मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, भी उहदा संबंध किहदे नाल है, धर्म नाल। ते धर्म की है जो पहला पारज कीती, एको धर्म दृढ़ है सच कोई, भी धर्म नाल उहदा संबंध बन जांदा है, सच नाल उहदा संबंध बन जांदा है। ते सच की है, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर। मन्नै मग न चलै पंथ, उन्हां पंथां दे राह ते नहीं तुरदा जेड़ा पंथ संसार दे विच वाद विवाद नफरत फैलांदा है। यह भी धर्म का एक रूप बन गया ना। मैं जिवें आरंभ विच यह बचन कीती भी यह धर्म है नहीं, है नहीं यह धर्म, पर धर्म दे नां ते यह कुरीतियां फैल गईयां। जिवें भी कोई चीज दा आरंभ हुंदा है भले लई हुंदा है चंगे लई हुंदा है, पर ज्यों ही संसार जगत दे अंदर वह मार्ग तय करदी जांदी है वस्तु पदार्थ, ते संसार दे लोकां दे राहीं उहदे विच कुरीतियां पै जांदियां। इसे तरह धर्मां दे विच कुरीतियां पईयां, ते जो नर सिंघार धर्मां दे नां ते होया ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ,
एक ही परमात्मा परमेश्वर दे दर ते तुरन वाला गुण है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। सर्व शब्दंग एक शब्दंग इत्थे शब्द अर्थ है, शब्द अर्थ हुक्म भी आया, शब्द अर्थ बाणी भी आया, शब्द अर्थ धर्म भी आया। इत्थे गुरु साहब जी ने शब्द अर्थ कीते ने भी सर्व शब्दंग एक शब्दंग, सारे शब्दां विच्चों धर्मां विच्चों एक धर्म ही प्रवान है। जिसने वो धर्म नू जान लिया, सच नू जान लिया, नानक ताका दास है, मैं उदा दास बन जांगा, सोई निरंजन देव। जिन्हें अपने आप नू धर्म नाल जोड़ लिया, उते निरंजन दा रूप बन गया, उते परमात्मा दा रूप बन गया, मैं उदा दास बन जावांगा, मैं उदा सेवक बन जावांगा। गुरु साहिब जी कहिंदे जे को जाणै भेओ, भेओ दा अर्थ है इस भेद नू बुझ ले, इस मर्म नू जान ले, ते मर्म नू जानण दे लई धर्म नू जानण दे लई धर्म शाल विच आउणा पैंदा। जिवें विद्या नू जानण दे लई विद्यालय विच जाणा पैंदा है, इसे तरह धर्म नू अपनाण दे लई धर्मशाला विच जाना पैंदा है। ते गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने सानू जेड़ी टिकाणा दिता है, एक गुरुद्वारा है, धर्मशाला है, इत्थों असीं धर्म सिख सकदे हां। धर्म केड़ा सीखना, मैं फिर अर्ज कर दिया कि जिदे विच साडे गुणा विच वाधा होवे, जदों दया खिमा प्रेम दा वाधा हो रहा है, समझो असीं धर्म वाले पासे जा रहे हैं। जे साडे अंदर नफरत पैदा हो रही है ते सानू लेबल ए लगा भी है मैं धर्मी हाँ, धर्मी बन के दूजे धर्म की तां गल छड्डो भी एक धर्म दूजे धर्म तो पहला नफरत करदा सी, पर अज ते हालात ऐसे हो गए ने एक धर्म दे एक धर्म नू मन्नन वाले लोग इन्ने फिरकियां विच वंडे गए ने कि एक फिरका दूजे फिरके नू चंगा नहीं सुन। धर्म इक्को ही है, इष्ट इक्को ही है, जे असीं अपने धर्म की गल करिए दूजे की क्यों करिए। सिख एक है, ओदा इष्ट गुरु नानक है, ओदा इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब है, पर जे आपां पुछ लईए एक कहेगा भी मैं इस थां नाल जुड़िया वा, मैं दूजे थां नू चंगा नहीं समझदा, दूजा कहेगा मैं तीजे नू चंगा नहीं समझदा, तीसरा कहेगा मैं चौथे नू चंगा नहीं समझदा। एक धर्म विच इन्नियां वंडियां पै गईयां ते फिर किस मूंह नाल असीं कह दिंदे आं भी असीं गुरु नानक दे सिख हां, असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पैरोकार हां, कि जिहड़ा ते इह कहिंदा भी तूं कल्ला इंसान छड्ड, दुनिया की हर कायनात जिहड़ी आ उहदी उपज है, अवल अल्लाह नूर उपाया, उहदे नूर तो पैदा होया, तू ते जीवां नाल जंतुआं नाल भी प्यार करना है, ते तू ते अपने भरा नाल प्यार नहीं कर सकता, तू ते अपने कौमी बंदे नाल प्यार नहीं कर सकता, नफरत प्या पालदा है। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे फिर इन्हें भेद जाणिया नहीं धर्म का, धर्मी बन गया, धर्म दे चिन्ह धारण कर लैने, ये वक्खरी वार्ता है। मैं अर्ज कर रहा सां, समा भी मुकता जा रहा है। भाई साहब भाई गुरदास ने सानू इस प्रति बड़ा सोहना समझाया भी जे धर्म सीखना है धर्म साल विच आओ, किवें आओ, उन्हां दा बड़ा प्यारा बचन है, वो कहिंदे ने जैसे तो मराल माल बैठत है मान सर, मराल दा अर्थ हुंदा हंस, माल दा अर्थ हुंदा पंगती। कहिंदे कदी मान सरोवर वेखो, जेडे गए हुण कदी, कहिंदे मान सरोवर दे नाल सारे पासे हंस बैठे हुंदे ने पंगत बना के। जैसे तो मराल माल बैठत है मान सर, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। कहिंदे उत्थे मुक्ता खांदे ने, मुक्ता दा अर्थ है मोती, अमोल दा अर्थ है बड़े कीमती मोती खांदे ने, खा खा के खुश हुंदे ने। ते सिख हंस क्यों नहीं बनदा, जदों सिख नू गुरुद्वारा मान सरोवर वर्गा मिलिया, ते सरोवर दे विच पानी दे विच फिर ये डड्डियां भी हुंदियां, कीड़ भी हुंदे ने, पर साडी विरती की है कि असी गुरुद्वारे आकर के मोती चुगने ने कि गुरुद्वारे आके निंदिया करनी है जां निंदिया सुननी है जां लोकां दियां कमियां वेखणियां ने जां अपने गुण दर्शाने ने, यह साडा जे काम है ते फिर धर्मशाल विच आके भी धर्म नहीं सिखिया। जैसे तो मराल माल बैठत है मानसोर, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। जैसे तो सज्जन मिल बैठत है पाकसाल, पाकसाल कहिंदे रसोई विच, कहिंदे जदों संग सारा रसोई दे कोल बैठता है पाकसाल विच बैठता है, अनेक प्रकार बिंजनात रस खात है, ते रसोई दे पास बैठ के भोजन छकदे आ रस लैंदे आ ना। तीसरी उदाहरण दिती भाई साहब भाई गुरदास ने, जैसे तो जैसे द्रुम छाया मिल बैठत अनेक पंछी, द्रुम कहिंदे रुख, कहिंदे जिवें रुख दी छां विच अनेकां पंछी आके बैठदे ने, खाए मधुर फल
बचन कै सुहात है, एक तो फल मिलता है ओदी छां मिलती है रुख दी, एक ओदे मिठे फल मिलते ने, कहिंदे उह पंछी मिठे फल खा के मिठे गीत गाते ने। यह तीन उदाहरण देख करके भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे तैसे गुर सिख मिल बैठता है धर्मशाल। इस तरह सिख भी धर्मशाला विच भाव गुरुद्वारे विच बैठता है। अज गुरुद्वारा नाम आपां कहिंदे आ गुरु साहबाना दे वेले धर्मशाल नाम दिता जांदा सी, अज धर्मशाला नूं असीं गुरुद्वारा कहिंदे आ जिथे गुरु दी सिख्या मिले ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਾਤ ਹੈ, ਅਗਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਸਵਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ ਪੰਡਿਤ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਧਰਮ ਜਾਣ ਫਲ ਸਤ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਈਏ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਧਰਮ ਪਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੀ ਓੜਕ ਸੱਚ ਧਰਮੀ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਪਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ

सिख संघ हरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख हुआ मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि कारणिक नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट फेन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो ताके तार तन कमे हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास सकना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसे ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दार्द दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दले हो बारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख तेले हो बचाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।